सुप्रभात श्रोताओ, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आज का दिन है सोमवार, शक संवत 1948, श्रावण महीने की 12 तारीख और अंग्रेजी वर्ष 2026 अगस्त महीने की 3 तारीख। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 5:57 हो चुके हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सहेली चुमकी। हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और आरंभ करते हैं आज की हमारी पहली सभा।

0: एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा।

0: जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी जानते हैं आज के हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों के बारे में।

सबसे पहले श्रोताओं 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम, 6:30 पर आप सुनेंगे वोमेंस प्रोग्राम, सुबह 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, ठीक 7:05 पर आप सुन पाएंगे आज का दिन, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:30 पर, 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर, 8:30 पर आप सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से, सुरु की रंगोली आप सुन पाएंगे 8:40 पर, 9 आप सुनेंगे पुआर आंचलिक बातोड़ी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

इसके बाद आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। सबसे पहले आप सुनेंगे खेलमा कार्यक्रम 9:15 पर गुंजोनली जैते और उनके साथियों के आवाज में। 9:25 पर आप सुनेंगे रंगखोल कार्यक्रम लिया नहीं बोल चौलखा और उनके साथियों के आवाज में। जयंतिया कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:35 पर कैमलांग फॉलन और उनके साथियों के आवाज में। 9:45 पर आप सुनेंगे बेते कार्यक्रम रॉयसुंगी नंपोए और उनके साथियों के आवाज में। 10:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 12:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 12:05 पर आप आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार आप सुन पाएंगे 1:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और इसके तुरंत बाद 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर फिर से आप आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार सुन पाएंगे शाम 4 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 4:05 पर आप आनंद लेंगे रंगारंग कार्यक्रम विविध भारती का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

ये थी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं भक्ति गीतों का।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं वुमेन प्रोग्राम।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग एफ 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है। नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं 1 मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम को वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्कार, मेरा नाम सुपर्णा चंदा है। मैं पिछले 2 साल से आकाशवाणी हाफलोंग से जुड़ी हुई हूँ। मुझे नई चीज़ें सीखना, लोगों से जुड़ना और अपने अनुभव साझा करना बहुत पसंद है। आज मैं अपने बारे में बताते हुए आप सभी के साथ एक छोटी सी प्रेरणा भी साझा करना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे तो सफलता ज़रूर मिलती है। और आज मैं खासकर सभी महिलाओं से कुछ कहना चाहती हूँ। कभी कभी रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन मुश्किल रास्ते ही आपको मजबूत इंसान बनाते हैं। अगर आप गिरते हैं तो रुकिए मत, उठिए, खुद को झाड़िए और फिर से चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। मैं भी हर दिन कोशिश करती हूँ कि खुद को कल से बेहतर बनाओ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी अपने सपनों को कभी छोड़े नहीं। धन्यवाद।
0: वुमेन टाइम के बाद दोस्तों, आज के हमारे वुमेन प्रोग्राम में साथ उपस्थित है हमारे हाफलोंग में ही रहने वाली एक टेलर, जिनका नाम है सबिता साहा जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सबिता जी आपका।
2: धन्यवाद
0: जी, आप अपने बारे में विस्तार से बताइए।
2: मैं तो एक टेलर हूँ
0: जी
2: मैं कर रही हूँ 98 से
0: जी
2: सिखाई करके 3 साल तक तो मैं दूसरे दुकान में करी।
0: जी जी
2: उसके बाद 2001 में अपने दुकान करी, वो सुपरमार्केट वहाँ तो 24 तक तो वहाँ किया।
0: जी
2: उसके बाद तो अभी तो वो तोड़ देगा तो नोटिस मिला, छोड़ दिया।
0: जी
2: अभी फिर से मैं बाजार में खुलने का इरादा तो है जनवरी से।
0: जी आपको टेलर ही बनना था बचपन से?
2: नहीं, वो तो पढ़ाई करके तो सब भी अच्छा ही कुछ बनना चाहता है, लेकिन क्या बोले, औरत लड़की को वो नसीब। तो टेलर बन गए उसमें भी खुश है, क्योंकि
0: जी
2: दूसरों को सिखा सकती हूँ, दूसरों का काम आती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का,
0: जी
2: जो किसी का काम आ जाता है।
0: जी आपने टेलरिंग कहाँ से सीखा?
2: मैंने तो सिनो टर्निंग और वृंदा लोहार बोल के वो उनका पास में सीखा। उसके बाद तो राभा टेलर वहाँ किया, जो अभी ब्यूटी टेलर है
0: जी
2: वो उसके पास किया। वो ने उसने तो बहुत मदद किया, तो उसके बाद अभी भी कर रहा है। और उसके बाद तो वो साधना हो जाए, जो वो मैडम ने तो हेल्प किया, और
0: जी
2: ब्यूटी टेलर का मास्टर जो हेल्प किया, उसके लिए तो हम आगे चला गया, फिर से गिर गया, लेकिन अभी फिर से ब्यूटी टेलर का मास्टर हेल्प कर रहा है, उनके पास ही काम कर रही हूँ अभी।
0: जी
2: और साधना मैडम तो नहीं है, मिस कर रही हूँ वो बहुत।
0: जी जी आपने जैसे बताया कि आपने टेलरिंग सीखा, जी आप तब क्या कर रहे थे जब आपने टेलरिंग सीखा?
2: उस टाइम तो मैं घर घर में ही रहती थी
0: जी
2: और बहुत तकलीफ ज़िंदगी काट रही थी। अभी तो भगवान का आशीर्वाद से चल रहा है, अच्छे ही है।
0: जी
2: और यही मैं चाहती हूँ जो बच्चा लोग को ज़िंदगी अच्छा हो,
0: जी
2: मेरे जैसे नहीं काटे।
0: जी जब आपने टेलरिंग सीखा उसके बाद आपने उसके बाद तुरंत ही आपने दुकान खोल लिया
2: नहीं,
0: था?
2: 2 साल तो दूसरे के दुकान राभा टेलर जो था वहाँ किया,
0: जी
2: 2 साल। उसके बाद अपना दुकान किया है, वो
0: जी
2: तो साधना मैडम ने हेल्प किया, इसलिए वहाँ ही जाके खोल लिया।
0: जी आपने अपना दुकान जब आप खोला, ये कितने साल तक आपने चलाया?
2: तो 2001 से 24 तक
0: जी
2: वहाँ ही थी।
0: जी और अब
2: अभी अभी तो वो नोटिस दिया डेमिस बिल्डिंग छोड़ने को,
0: जी
2: तो 24 में तो आप मार्च ऐसे में तो छोड़ दिया।
0: जी
2: तो खोला भी हम 2001 का मार्च में,
0: जी
2: छोड़ा भी 24 का मार्च में,
0: जी
2: तो इसलिए जनवरी खोलेगा जो वो तो हम जनवरी में
0: जी
2: आशा करता है आप लोग भी साथ दीजिए
0: जी
2: हमको।
0: बिल्कुल जी। आपने जैसे आपने बताया कि आप टेलरिंग करती है, तो आपका कैसा रहता है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न कपड़ों का स्टिचिंग रहता है?
2: अब जैसे चाहे वैसे कस्टमर के ऊपर
0: जी
2: जैसे
0: आप
2: चाहेगा
0: सबसे
2: वैसे।
0: ज़्यादा क्या सिलाती है?
2: लेडीज का ही
0: जी
2: ब्लाउज
0: जी आप
2: और सिखाती भी हूँ,
0: जी
2: तो इतना साल तो सिखाए, बहुत सारा ही सिखाए, तो मेरा तो रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्री का तरफ से ही है,
0: जी
2: तो सर्टिफिकेट भी देती हूँ मैं।
0: जी जी जी आप क्लासेस भी चलाती थी
2: जी
0: जी। अब जब आप नए सिरे से फिर शुरू करेंगी, तब क्या आप फिर से क्लासेस स्टार्ट करेंगी?
2: जी वो
0: जी
2: तो मेरा मतलब एक मकसद है जो हर लड़की में आ जाए,
0: जी
2: जो सीखे वो भी अपना पाँव में खड़ा हो,
0: जी बिल्कुल
2: पछतावा नहीं हो, कभी मेरे जैसे पछतावा ना हो।
0: जी जी आप काम और घर आप कैसे बैलेंस करती है?
2: तो सवेरे हम घर का करके आ जाते हैं, दुकान से जाके फिर करते हैं,
0: जी
2: दिन
0: जी
2: भर दुकान, रात में घर में,
0: जी
2: सुबह घर में।
0: जी जी आप टेलरिंग के अलावा अगर आपको पूछा जाए कि आप खाली समय में क्या करना पसंद करती है, तो आप क्या कहेंगी?
2: सबके साथ बात करें, दिल को शांति मिले, वही।
0: जी, आजकल के टाइम में एक औरत को, एक वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है?
2: मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त किसी को बोल के नहीं आता है,
0: जी बिल्कुल
2: और जाता भी है किसी को बोल के नहीं, इसीलिए अपना हाथ में सब रहे, जैसे कि अपना टैलेंट है, तो वो औरत हो लड़की हो कभी भी झुकेगा नहीं,
0: जी
2: हर लड़की को होना ही चाहिए।
0: जी बिल्कुल जी। अगर कोई टेलरिंग शुरू करना चाहे जी, आप उसे क्या सलाह देंगी?
2: टेलरिंग सीखेगा तो वो तो ठीक है, लेकिन जो भी काम करो सिर्फ टेलरिंग बोल के नहीं,
0: जी
2: पूरा करो, आधा अधूरा कभी भी सक्सेस नहीं होता है,
0: जी बिल्कुल
2: तो पूरा करो। तो हम तो टेलरिंग कराता है कि 6 महीना, तो 6 महीना करने से तो एक एक तो आएगा हाथ में,
0: जी
2: तो
0: बिल्कुल
2: जो भी काम करो, मेरा बोलना है टेलरिंग बोल के नहीं, जो भी काम हर लड़की के ही, मेरा भी 2 लड़की है,
0: जी
2: जो काम करो पूरा करो।
0: बिल्कुल जी। जो आप दुकान चलाती थी, उसमें आप ऐसे आपके साथ और भी हेल्पर थे या सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहते थे?
2: नहीं, हेल्पर भी था,
0: जी,
2: हेल्पर
0: जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ से ही सीख के जाते हैं, वो क्या आपके यहाँ पे हेल्पिंग भी कर सकते
2: करता
0: हैं,
2: है। हाँ
0: कमा भी सकते हैं? जी। और जब हमारे हाफलोंग में दुर्गा पूजा या कोई फेस्टिवल में बहुत सारे कपड़े सिलाने के लिए आते हैं, तब आप कैसे सब कुछ मैनेज करती है?
2: उस टाइम तो मेरा बेटी लोग भी हेल्प किया,
0: जी
2: और आदमी मतलब कारीगर भी था, तो मतलब माँ बेटी कारीगर मिला के हम लोग मजे से चला लेते।
0: जी जी जैसे आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के बारे में कहा कि हर किसी को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए, आजकल देखा जा रहा है कि लड़कियां काफी आगे बढ़ रही है जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: इसके लिए तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद लड़कियों को, और भी आगे जाओ यही चाहता हूँ।
0: जी। आपका कोई बचपन का या कोई प्यारा सा यादगार मोमेंट जो आप बोलना चाहें?
2: सीख के जब मैं राभा टेलर में काम किया, उसके बाद जब पैसा मिला, इतना खुशी लगा जो दुनिया ही मिल गया,
0: जी
2: क्योंकि खुद कमा के खुद पैसा जमाया, जो बहुत खुशी की बात है।
0: जी
2: तो टेलरिंग करके पूरा जिंदगी तो चला गया मेरा, बच्चे लोग टेलरिंग में ही टेलरिंग कर करके चला लिया, भगवान आगे भी चला लेगा।
0: जी आप लाइफ में और आगे क्या करना चाहती है?
2: अब लड़का आगे तो चल कर क्या, बच्चा लोग को खुशी सुख वही है,
0: जी
2: और तो कुछ नहीं यार,
0: जी
2: अपना तो चला गया।
0: जी जी जी अगर आप टेलर ना होती तो आप क्या होती?
2: वकील बनती
0: जी, आपको वकील बनना
2: बहुत
0: बोल,
2: पसंद है।
0: जी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा जी। आप खाली समय में जब टेलरिंग आप नहीं कर रही होती तो आप क्या करती हैं?
2: और सिलाई का काम ही करती हूँ।
0: जी, सिलाई में भी बहुत सारे काम होते
2: हाँ,
0: हैं
2: जैसे
0: जी।
2: वो होता ना मेखला चादर, दुई बूटी बांधना, तो जैसे कि मेरा काम मुझे मतलब खुद करना पसंद है। मैं सिलाई में ही हाथ काम करूँ
0: जी
2: ये पसंद है हमको, मतलब दूसरों को देने से पसंद नहीं आता हमको, तो
0: जी
2: मेरा हाथ का वाला मैं ही करती हूँ। रात को ले जाती हूँ, घर में करती हूँ, जैसे कि मेखला चादर का दुई बूटी बांधना, ये वो है ना, तो वो सब मैं रात को करती हूँ।
0: जी जी बहुत सारे और भी चीज़ें होते हैं, एम्ब्रॉयडरी, क्रोशे, ये सब भी आपको आता है?
2: आता है लेकिन अभी तो कर नहीं पाती हूँ।
0: जी
2: पहले तो एम्ब्रॉयडरी करती थी, दुकान
0: जी
2: में ही करती थी मशीन से, तो अभी तो नहीं होता है।
0: जी अभी आप सबसे ज़्यादा ब्लाउजेस वगैरह ही आप सिलती
2: जी
0: हैं
2: जी
0: जी। जब आपने जिसे बताया कि पहले पैसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा, तब नया दुकान आपने स्टार्ट करने में तब आपको बहुत मुश्किलें भी आई होंगी।
2: हाँ,
0: हाँ
2: वो तो
0: जी
2: आई।
0: जी उसके बारे में बताएं, कैसे पहला दिन कैसा था, कैसे आपने शुरू किया?
2: मैंने तो पहले दुकान जब ओपनिंग किया तब तो मैं राभा में काम करती थी, वहाँ से पूरे हफ्ता का बाजार करके 50 रुपया था, 50 रुपया लेके वहाँ सुपरमार्केट, तो मैडम ने बात करा दुकान के लिए, बात करने के बाद वो 50 रुपया लेके ओपनिंग कर दिया। तो
0: जी
2: 50 रुपया में क्या आता है, एक विश्वकर्मा का फोटो लिया, धूपकाठी मोमबत्ती, बस धुना दिखा दिया, सारे दिन बैठी खाली दुकान। तो उसके बाद तो मैडम ने वो DRD का
0: जी जी
2: मशीन वशीन भी दिए थे, तो वो सबसे शुरुआत करके धीरे धीरे धीरे धीरे खुद भी कीना, ऐसे करके तो बढ़ा ही लिया।
0: जी
2: आदमी को चाहे मन में चाहे मुझे आगे बढ़ना ये करना है, वो कर सकता है। अभी भी दुकान जाने के बाद में हिम्मत तो नहीं आ रही, मैं कर सकती हूँ,
0: जी
2: क्यों
0: बिल्कुल
2: हारूँ, मेरा पास है टैलेंट तो मैं कर सकती हूँ, आज नहीं तो कल। उतार चढ़ाव तो हर कोई के जिंदगी में है, तो होता है ना, तो इसके लिए हम नहीं डरते हैं।
0: जी बिल्कुल,
2: हाथ पर सही सलामत रखे माँ काली, बस हो गया।
0: ये जज्बा रहना चाहिए
2: तो वो
0: जी।
2: सब लड़की को यही बोलना चाहती हूँ, हिम्मत मत हारना, जो उतार चढ़ाव रहेगा हिम्मत मत हारना। मैं अपना लड़की हो या जो भी लड़की, सब मेरा बेटी है,
0: जी बिल्कुल
2: और बेटा से बेटी को मैं ज्यादा प्यार करती हूँ।
0: जी। आप जैसे आपने ये बात बताई कि बेटी को आप ज़्यादा प्यार करती है जी, ऐसे खुद आप एक उमेन हो, क्या आप सोचती है कि ये एक वरदान है भगवान का?
2: जी, ऊपर वाला खुद सोच के ही मुझे भेजा है ना, मेरा 2 बेटी 1 बेटा है, इसमें खुश है, हम पूरा परिवार है मेरा।
0: जी, आजकल के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है कि घर पे बैठा हुआ है, बट कोई कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे, मैं अगर पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ तो बैठे रहते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज के टाइम में आप घर का या कोई भी खाना बनाना या कुछ से भी आप कुछ भी पैसे कमा सकते हैं।
2: जो ऐसे बैठा है, कुछ जॉब नहीं है, तो हर कोई के पास तो दिमाग है, कुछ ना कुछ टैलेंट तो है, वो निकालो,
0: जी
2: वो निकालना चाहिए, वो खुद से निकालना पड़ेगा, कोई नहीं निकालेगा, वो खुद से निकालना पड़ेगा। कोई तो खाना भी अच्छे से बना कर वो पैसा कमा सकता है,
0: बिल्कुल
2: तो पढ़ाई लिखाई होने से तो उसका तो और टैलेंट अच्छा ही होगा। घर में बैठा मत रहो, घर बैठ के भी कमा सकता है, लेकिन आपका पास क्या टैलेंट है वो आप खुद निकालना पड़ेगा, वही
0: बिल्कुल
2: बात है।
0: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। आपने जैसे बताया कि आप बहुत सालों से टेलरिंग कर रही है जी, इतने सालों से आप टेलरिंग कर रही है, आप, आपको कैसा महसूस होता है कि आप अपने कमाए हुए पैसों से आप घर चलाती हैं?
2: बहुत अच्छा लगता है हमको,
0: जी
2: खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, किसी को बोलना नहीं पड़ता है, किसी से इजाजत लेना नहीं पड़ता है, इसके लिए हम भगवान का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया देते हैं,
0: जी
2: का भरोसा में चलते हैं ना,
0: जी जी
2: इसलिए
0: जी अपने ऊपर भरोसा रखना कितना ज़रूरी है एक वुमेन के लिए।
2: बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक घर भी बनाने से वो कितना साल चलेगा वो तो हम लोग गारंटी नहीं दे सकता है ना,
0: जी
2: तो इसलिए किसी के ऊपर भरोसा करके भी हम लोग नहीं सकेंगे।
0: जी बिल्कुल
2: अपने ऊपर अगर भरोसा है तो बाहर का भरोसा भी मिलता है, अपने ऊपर नहीं है तो बाहर से भी नहीं मिलेगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा है आपने। आपने नहीं सोचा कि कभी बाहर जाकर अपना बिजनेस को और बड़ा करें?
2: ऐसे तो सोचे हैं, सोचने से भी बाहर बिजनेस बड़ा करें उसके लिए भी तो साथ चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
2: तो हम बच्चा लोग भी छोटा है, अभी तो बड़ा हो गया, तो अभी डिपेंड कर सकते हैं जो बच्चा लोग को चलो बाहर चलाए।
0: आजकल सोशल मीडिया भी काफ़ी हेल्प कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर कुकिंग कर रहे हैं या टेलरिंग कर रहे हैं या खुद से, इवन यूट्यूब से देख के खुद सीख के फिर यूट्यूब में डालना, ये सब, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी घर पे खाली भी नहीं बैठा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी उन्हें पैसे मिल रहे हैं। जी
2: वो सोशल मीडिया वो सब तो हमको इतने इंटरेस्ट नहीं है।
0: जी जी
2: जो मेरा मतलब मैं तो थोड़ा अलग ही हूँ, मेरा हाथ से जो चलता है वही हम इंटरेस्ट है।
0: जी
2: सिर्फ टेलरिंग बोल के नहीं, और भी काम होता है ना, तो हाथ से जो चलता है वही हमको इंटरेस्ट है। वो मोबाइल का वो इतना हमको पता भी नहीं है, वो सब में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है।
0: जी जी आज आज जो आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देने चाहेंगे अपनी तरफ से?
2: कहना चाहती हूँ जो जो भी जो करते हैं उसको बंद नहीं करना है, जब तक चलता है चला के जाना ठीक है। खुद का भरोसा में जीना बहुत खुशी होता है, चाहे कुछ भी मोड़ आ जाए, अपना जो है वो छोड़ना नहीं है जब तक चलता है, कि वो छोड़ देने से अपना तो सभी छोड़ दिया।
0: जी बिल्कुल। सबिता जी आपने बहुत ही अच्छी बातें कही हमारे साथ और आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते सबको, धन्यवाद आपको लोग को जनाते हैं।
0: आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर। मैं आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती और अब विदा लेते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन श्रोताओं आप सुन रहे थे वुमेन्स प्रोग्राम साथी कुछ बेहतरीन गीत। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं हिंदी में समाचार जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आप सुनते हैं पोएम ऑफ द डे।
1: हायर सेकेंडरी स्कूल हफलोंग में कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक हिंदी कविता सुनाऊंगा। कविता का नाम है कोयल। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही थोकू कूकर आमों में मिश्री गोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। प्यासी दर्जी देख मांगती हो क्या मेंढों से पानी। कोयल ये मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है। बहुत भाली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी। इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़िया की रानी। थैंक यू।

श्रोताओ, अब शुरू करते हैं कार्यक्रम आज का दिन। श्रोताओ, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जन्म जयंती है। हर साल 3 अगस्त को ये जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उन्हें हिंदी कविता में खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी।

श्रोताओं, आज का दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि आज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है। विश्व स्तनपान हफ्ता ये 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस विषय की अर्थ ये है कि जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान को जागरूक करें और इसके महत्व को समझाया जाए।

वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक 2026 की थीम यह है कि जीवन की सतत शुरुआत के लिए जो कारगर है उसे मजबूत करें, जैसे कि स्तनपान को महत्व दें। इसका मुख्य उद्देश्य परिवारों, समुदाय और स्वास्थ्यता सेवा पदाधिकारियों के बीच स्तनपान की प्रति जागरूकता बढ़ाना है तथा पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना आवश्यक माना जाए इस बात पर गौर करना है।

श्रोताओ, आइए आप जानते हैं आज के दिन यानी कि 3 अगस्त को देश दुनिया में घटे गए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। श्रोताओ, पुष्पकलम दलहाल 2016 में नेपाल के 29वें प्रधानमंत्री बने। महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ 2012 में कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक 2010 में पारित हुआ। इसराइल और लेबनान के बीच 2006 में हुए युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सीमा संघर्ष हुआ।

मोहम्मद अहमदीन झा 2005 में ईरान के राष्ट्रपति बने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2006 में कहा कि वो भारत को यूरेनियम संवर्धन से सहायता नहीं देंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 2007 को रवाना हुआ रूसी अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस M-61 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंची। अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए 2004 में रवाना हुई।

फ्रांस ने 1991 में प्रशांत महासागर में परमाणु परीक्षण किया। बाबा अमेट के जनसेवा के लिए रेमन मैसेज पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया। ब्रिटेन की केविन मदर द्वारा अपनी 100वीं वर्षगांठ 2000 में मनाई गई। अमेरिका के एलेंगेट चर्च में 2003 में एक समलैंगिक विशेष पर नियुक्त करने की मौजूदगी दी। अमेरिका में 2001 में आतंकवादी हमले के बाद बंद किए गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जनता के लिए 2004 में दोबारा खोला गया।

न्यूजीलैंड में दूसरा मेओरी युद्ध 1860 में शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। पहला समुद्री जहाज पानामा नहर से 2014 में गुजरा। अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरिक आचकन निधन के बाद क्लेविन क्लूच ने 1923 में अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति रूप से शपथ ली।

आइए आप जानते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने आज के दिन यानी कि 3 अगस्त को जन्म लिए हैं। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान में प्रथम उच्चायुक्त श्री प्रकाश का जन्म 1890 को हुआ था। भारतीय गीतकार और शायर शकील बदायूनी का जन्म 1916 में हुआ था। आज ही के दिन भारतीय संगीतकार तथा बाल अभिनेता जयदेव का जन्म 1919 में हुआ था। अमेरिकी लेखक रॉबर्ट समनर का जन्म 1922 में हुआ था। अग्रणी कन्नड़ कथा लेखक यशवंश चित्तल का जन्म 1928 में हुआ था।

भारतीय क्रिकेटर अपूर्व सेनगुप्ता का जन्म 1944 में हुआ था आज ही के दिन। बंगाल साहित्य के एक प्रमुख कवि उत्पल कुमार बसु का जन्म भी 1944 में हुआ था आज ही के दिन। भारतीय क्रिकेटर बलविंदर सिंधु का जन्म 1956 को हुआ था आज ही के दिन। एक जापानी अभिनेता कोइची तनक का जन्म 1960 में हुआ था। भारतीय क्रिकेट गोपाल शर्मा का जन्म 1960 में हुआ था। अभिनेत्री फैजल खान का जन्म भी 3 अगस्त 1967 में हुआ था आज ही के दिन। पंजाबी गायक मनमोहन बारिश का जन्म 1997 में हुआ था आज ही के दिन। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री का जन्म भी 1984 में हुआ था आज ही के दिन। अमेरिकी तैराक और ओलंपिक विजेता रियन लॉक्स का जन्म 1948 में हुआ था आज ही के दिन।

श्रोतो, आप बात करते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने आज के दिन निधन हुआ है, यानी कि 3 अगस्त को वे व्यक्ति हमारे देश और दुनिया से निधन हुए थे। रिचर्ड ऑर्कराइट का निधन 1792 में हुआ था आज ही के दिन। मौलवी खुदाबख्श खान का निधन 1908 में हुआ था आज ही के दिन। अनेज गिमोना का निधन 1937 में हुआ था आज ही के दिन। कृष्णराज वडार चतुर्थ का निधन भी आज ही के दिन हुआ था 1940 में। महात्मा गांधी के पुत्र और प्रसिद्ध पत्रकार देवदास गांधी का निधन 1997 में हुआ था आज ही के दिन। स्वतंत्रता सेनानी तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल सीएम पुनाचा का निधन 1990 में हुआ था आज ही के दिन।

हिंदुस्तान रिबलिंक एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य प्रेम कृष्ण खन्ना का निधन 1993 में हुआ था। आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध आत्मधिक चितक का निधन हुआ था आज ही के दिन 1992 में। रूस के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक अलेक्जेंडर का निधन 2008 में हुआ था आज ही के दिन।

आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: अब पेश है मेरी बात।
1: नमस्कार, मैं संगीता प्रधान महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने जा रही हूँ। महिला सशक्तिकरण हमारे समाज की तरक्की का आधार है। जब महिलाएं मजबूत होती है तो पूरा परिवार, समाज और देश आगे बढ़ता है। आज का समय महिलाओं को उनके अधिकार, शिक्षा और बराबरी देने का है। हमें समझना होगा कि महिलाओं को पढ़ाई और मौके देना बहुत ज़रूरी है। एक पढ़ी लिखी महिला पूरे परिवार को बेहतर बना सकती है। हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत देना चाहिए।
0: आइए अब आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गीतों का। पहला गीत पेश है कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
4: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek.
4: श्रोताओ आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.2 MHz पर। ये आकाश

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे नॉर्थ ईस्ट न्यूज आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

श्रोताओ, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सिरों की रंगोली। इस कार्यक्रम में आज पेश है शंकर महादेवन जी के कुछ बेहतरीन कलेक्शंस।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं पौराणिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे खेलमा भक्ति गीत गुंजौनले जैते और उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं रंगखोल कार्यक्रम के तहत रंगखोल आधुनिक गीत लियाने बोल चोलखा और उनके साथियों की आवाज में।
1: Thank you.

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे जयंतिया भक्ति गीत का केमनलांग फॉलिन और उनके साथियों की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बेते कार्यक्रम के तहत बेते आधुनिक गीत रुईसोंगी नामपोई और उनके साथियों की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आनंद ले विविध भारती के कार्यक्रम का, और मुझे यानी चुमकी को दे इजाजत।

0: ये है विविध भारती,
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन, थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर
1: है।
2: मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं

0: एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई। हाँ,
1: जी
0: फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई। और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू झवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वॉज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुलकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे, वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बंबई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह।
0: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बंबई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंसवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे, मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया।
1: जी,
0: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी, और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई। तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास, ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बिचारी नई नई आई हुई, फिर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद, स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी, मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू, एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना। हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं, और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैड माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म, पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई, और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये चार फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी का सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ, मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सही ने तो मुझसे बात की थी, मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष अवसठ करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता, तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे। तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो? तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, एंड दैट वॉज इट, दैट वॉज द लास्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड। फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा, मैंने नहीं पूछा, मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे,
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ,
0: हाँ, अरे वाह,
1: है
0: हाँ।
1: ना? सुन।

0: लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना है, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा इसे जरूर। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट 1 महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी? कहा नहीं। मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो फला करो, मैं अब मेहनत करूं लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले हैं आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे,
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई लिख ली मेरी हवा खुश। मैंने कहा आ नहीं अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है लेकिन ऐसे करो प्लीज मुझे 1 हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने। कहा फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदल रहा था वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था,
1: योगदान,
0: योगदान,
1: कंट्रीब्यूशन।
0: एग्जैक्टली योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए, वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हो, इसे इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला
1: भाई
0: दीपाली का,
1: डाला।
0: एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। हाँ, तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था, कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था,
1: अच्छे
0: कि
1: प्रोड्यूसर की
0: अच्छे
1: निशानी।
0: प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग, और फिर फिल्म बन गई, और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और
1: बिल्कुल
0: वहां भी गुल बहुत ही मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनी वन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने, अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया, और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज ड्राइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ, सेम विथ फारूक, सेम
1: रवि,
0: विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने, कुछ 2-3 लोगों के लिए मैं अड़ गई थी, एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी।
1: क्या
0: मैंने
1: बात
0: कहा
1: है।
0: ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ले लिया उसको, क्योंकि बाकियों को तो कह, रवि को बेचारे को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना,
1: राकेश बेदी,
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को, लेकिन उसने
1: फारूक कहां से, किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना,
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली के।
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर, और फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा जाके, चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी, और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान,
1: दो फिल्में, और
0: बहुत
1: वो
0: बहुत अच्छा
1: आगे बात
0: आदमी।
1: करेंगे कि कैसे
0: हाँ
1: कथा में
0: हाँ
1: नसीर और
0: या
1: फारूक आपसे लड़ाई करते थे, कि कैसे रोल दिए, है
0: या
1: ना, वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते हैं।

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ, सईद का ना बहुत
0: जी
1: बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, मतलब ट्रिमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनैलिटी, बिग पर्सनैलिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन. और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या. वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा
0: वाह,
1: और सईद को पकड़ा लिया. और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था. तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म, एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का. हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, भाई वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा. मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे. हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह. तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
0: एक और आ
1: गया एक और आ गया.
0: गया।
1: तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई, और कमाल का ये किया. और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को. तो फिर हमने फुफन और याकूब और
0: अच्छा
1: लच्छन और ये वो, हाँ, कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी. और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए. तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की. मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मिया बोल रहा हूँ. तो वो नाम मिल गया. तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया. एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल. लीला मिश्रा भी क्या
0: क्या शानदार।
1: कमाल की एक्ट्रेस और वंडरफुल
0: बिल्कुल
1: पर्सन.
0: बिल्कुल
1: बहुत बहुत
0: सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ
1: वो
0: दिलचस्प
1: ढूंढना
0: बातें?
1: क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी कि
0: अच्छा
1: अरे हमें ये इधर नहीं देखा,
0: हाँ
1: हमको शूट करो. क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच. इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई. और एक तो खंडहर दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी. और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है
0: जी
1: ना.
0: जी
1: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले. फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में
0: जी
1: रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का. तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए. नसीर का घर जो था वो, दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट, एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा, सुंदर
0: बिल्कुल।
1: सा
0: और
1: छोटा
0: वो
1: सा,
0: जिस तरह से
1: हाँ
0: वो किचन
1: बड़ा
0: चाय बनाते
1: टेस्टफुली
0: हैं।
1: किया हुआ. फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया. दोस्तों का था वो एक घर. और तीसरा रहा वो मंजुल जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है जो संकन लिविंग रूम है उसका. वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो
0: वाह
1: उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया. तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे बदूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी. बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए। मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
0: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी
1: हाँ
0: चश्मे-ए-बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं,
1: हाँ
0: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी
1: हाँ
0: बनाई
1: मजाक
0: है।
1: उड़ा था यार, रवि जो गाते हैं,
0: जी
1: रवि और दीप्ति मिलके।
0: जी
1: हाँ
0: वो कमाल है,
1: हाँ
0: जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी
1: जी या
0: परवीन बाबी का गाना आ जाता है, तो कभी
1: हाँ,
0: पुराने गाने चले आते
1: कभी
0: हैं,
1: जीनत
0: कभी
1: अमान का आता
0: जी
1: है
0: जी
1: कभी देवानंद का। और वो
0: क्या
1: मैंने
0: कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
1: किया भी उसने वो ढीली ढाली चाल उसकी,
0: जी।
1: और कभी दिल चाहे या माथा यारा
0: मैंने
1: मैं
0: तो हाँ
1: तोहा
0: कह
1: कत,
0: दी,
1: हाँ वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे
0: शीशा हो या
1: का।
0: दिल, उसमें तो जो
1: हाँ
0: दीप्ति
1: या
0: लगी है
1: ये वो बहुत अच्छा किया रहा है उसने, बहुत सुंदर
0: जी
1: किया रीना रॉय का, बहुत खूबसूरत। तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत।
0: जी ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
1: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना, आ जा आ जा,
0: तीसरी
1: इसका
0: मंजिल,
1: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोकझोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ वीक पहने वगैरह। पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
0: डांस करवा ले
1: डांस करवाए ना। तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब वीएचएस का जमाना था
0: जी
1: है, तो वीएचएस एक मंगवाया मशीन, और वीएचएस कैसेट्स थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। आ, आ, आ, उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब। तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए, मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह। और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही ये सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल ये सही श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भर आया, ऊब गया वो भी, और उसने फिर वो रोका वीएचएस मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो वो मैं हूँ, मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप। फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती
0: वाह वाह वाह,
1: थी
0: क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है,
1: जी बहुत है बहुत है
0: उसका
1: योगदान।
0: जिक्र हम करना
1: हाँ
0: चाहेंगे।
1: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं आखिरकार, जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई।
0: जी
1: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग। और यहां तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में। हाँ
0: जी जी
1: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वॉज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है,
0: जी
1: विच इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी कोई नहीं करता। फिल्म वाला, जो किसी नाम का फिल्म वाला हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक मतलब भद्दा होता है नहीं, वो
0: जी
1: सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है। लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे, तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास। तो मैंने कहा पिटाई करवानी है। मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर भद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर, ठक से एकदम पूरा रील का रील बाहर, कि तुम
0: वाह
1: शर्म नहीं आती कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे, किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा किया, हमें भी बहुत अच्छे मिले। फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब करके,
0: जी
1: वेरी वेरी नाइस कॉडिस्ट, तो उन्होंने काम किया। एनीवे, फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए। उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए, तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आइए। पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई? तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते हैं। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की। अच्छा ठीक ठीक चलो, तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल, जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटेस्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा। वो जो चश्मे बद्दूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। हाँ, बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यहाँ करेंगे वहां करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है, और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा, तो आप कुछ करो। और वो वहां से फिर भाग जाता है, बड़ा पानी पानी होकर शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बिताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यो क्या त्यो क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए, कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी सब वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है, फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए, और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी, और
0: जी
1: वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, नहीं इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया। मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत, वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काव काव काव। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे।
0: गजब
1: क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया, और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी, और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, कहते हैं सही हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या, कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो, उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश है ना,
0: गजब
1: इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट, वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को, अपने फारूक को, कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है, तो अब क्या करे। वो दोनों बहुत मायूस है और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, है ना?
0: वाह
1: वो होता है ना कि आपकी पसंद वाला
0: जी।
1: मैंने कहा हाँ, वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन
0: अनाउंसमेंट
1: डबिंग
0: करवाइए।
1: अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है। वो ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, उन्होंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर। मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं, वो मंगेशी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करें कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो, नो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई,
0: जी, जी.
1: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वगैरह ये सब सब डाला और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आ रही, दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, वाह वाह क्या बहुत खूब।
0: तो क्या बात है, लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया।
1: बिल्कुल, अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
0: जी,
1: है ना?
0: बिल्कुल, इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है।
1: हाँ बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को, वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी काली सी,
0: हाँ।
1: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
0: क्या शानदार लाइन है।
1: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक,
0: हाँ।
1: और फिर गाने वाले,
0: हाँ।
1: और फिर मेरे एक्टर और मैं,
0: कमाल। ये गाना सुनते हैं
1: जी, क्या बात।

0: चकित भयो गरे नगरे काले घोडे दौड पडे काले घोडे दौड पडे काले घोडे दौड पडे काले घोडे दौड पडे।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया, ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहाँ से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
1: जी, तो आंसू बह रहे हैं उसके, माहौल आप बनाते हैं उसमें।
2: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रिल्यूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
1: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
2: वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
1: बिल्कुल,
2: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मतलब मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, हाँ। वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
1: बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल,
2: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
1: बिल्कुल, तो ये गाना इस इंटरव्यू में प्यार लगावट
2: भी सुनोगे? ओके।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं, और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली
0: जी, नामावली, जिसमें
1: टाइटल्स।
0: वो
1: हाँ
0: एनिमेशन वगैरह है।
1: हो,
0: जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और
1: हाँ
0: कथा में वो चूहा बिल्ली।
1: हाँ यस, टाइगर और ये वो। और कथा
0: हाँ
1: में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आपने देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। हाँ, तो वैसे उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये
0: लायन है।
1: बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल,
0: फूल
1: जसवंती का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रो

0: लक्षण था फिल्म में, जो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू, एक नया परिचय विनी परांस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर हा करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश, इनकी रेस तो फिर चलती रहती है चलती रहती है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो उसमें सारे अलग अलग
0: भी क्या, और
1: एनिमेशंस।
0: चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह, ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ
1: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना,
0: हाँ
1: इस तरह से पूरा
0: या
1: फिर आपका नाम आता
0: दैट्स
1: है।
0: राइट हाँ
1: सुंदर, मतलब वो
0: हाँ
1: ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया
0: हाँ
1: बातचीत में, और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
0: हो, उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड और कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा
1: कोई
0: कि
1: टकराव होता
0: आओ। बहुत बार, बहुत बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
1: जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।
3: उजाले।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले हरिओम शरण की आवाज में ये भजन आपको सुनवाते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में तुम आए, इस एल्बम का गाना जावेद अख्तर के बोल, राजू सिंह का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: पंकज उदास की आवाज, शब्दकार मोहम्मद अलवी, संगीत पंकज उदास का, एल्बम मुस्कान।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें RS हरियाणवी रतन के बोल हैं। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का, एल्बम तस्वीर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी। शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, दिलीप वर्मन का संगीत, एल्बम रात।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमाल खान की आवाज, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

पहला नशा इस एल्बम का गाना सुनिधि की आवाज में, नक्शलायलपुरी के बोल, संगीत है ललित का। ये है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोंसले की आवाज, संगीत रवि का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं ने के बोल, संगीत है रवि का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर, इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, संगीत है रवि का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आंखों थी आंखों में इशारा हो गया।
3: दो बदन फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उड़न खटोला फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक हमारे साथी की ये बात है कि सावन का पहला सोमवार देवों के देव महादेव की जय और इधर सुरीले सफर में जयदेव की सुरीली धुनों से सजे गीतों का आगमन, क्या संयोग बना है। आज तो कार्यक्रम में जयदेव का उद्घोष रहेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि सच्ची भक्ति और इंसानियत इंसान को ऊंचा उठाती है। भगवान किसी से मिलावट या दिखावा नहीं मांगते, बल्कि वे हमेशा सच्चे और ईमानदार भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति विश्वास इंसान के दिल से अहंकार ईर्ष्या और नफरत को मिटाकर दया प्रेम और इंसानियत जगाती है। ये मनुष्य को नैतिक और अच्छा इंसान बनाती है, जिससे समाज में उसका और दूसरों का जीवन सुधरता है। एक हमारे साथी की ये बात कि आज श्रावण मास के पहली सोमवारी है, इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। विविध भारती के तमाम मित्रों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है शुभकामना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक हमारे साथी की बात कि भक्ति की शक्ति से पूर्ण सुक्ति चित्रित करती इबारत की पंक्ति है, आसक्ति की युक्तियों में भटकते व्यक्ति के विभिन्न उक्तियों को युक्ति युक्त तरीके से ईश्वर सम्मुख समर्पण का मार्ग दर्शाती इबारत है, संगीत में सफर आनंदित करेगा, ये इस बात का हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपनी जो इबारत है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए गाने भी हैं, और हम आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जो ईश्वर की भक्ति है या ईश्वर का नाम है, या यूं कहें कि उनके ऊपर जो विश्वास है, वो कब कब कौन सी परिस्थितियों में आपको बहुत संबल देता है? कब आपको लगा कि बस उनके सहारे ने हमें बहुत बड़ा संबल दिया? ये आप हमें बता सकते हैं। घरोंदा फिल्म का गाना भूपिंदर सिंह की आवाज में अमोल पालेकर पर फिल्माया गया है, बोल किसके हैं ये आप बताइए हमें।

घरोंदा फिल्म का गाना, गुलजार का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की ये बात है कि जब कोई अनजान शहर में अकेला अपनों से दूर जिंदगी की तलाश में निकलता है तो यही गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में रात में है, रात में और दोपहर में। और जब अपनों की याद सताती है तो सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तब सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, ये गीत हमें याद आता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि दिग्गज संगीतकार जयदेव, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बेहतरीन काव्य के साथ मेलोडी, मुश्किल फिर भी मनमोहक भावना प्रधान धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे, बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम सुन रहे हैं। एक साथी ने ये भी लिखा है कि आज की इबारत संगीतकार जयदेव की यादों के फूलों से बुनी जाने वाली है, बुनी जा रही है, तब हम यही कहेंगे उनके संगीत से रचे गीत सुनकर जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे आपके मन को मिलेगा। और विविध भारती के लिए भी कहेंगे कि तुम्हें देखते हैं सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानते हैं सुनते आए हैं, अगर तुम हो संगीत सागर हम प्यासी नदी समान श्रोता हैं। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं, बहुत धन्यवाद आपका। एक अकेला इस शहर में ये गाना हमने सुना। आप ऐसी कोई याद हो आपकी कि आप किसी शहर में, नए शहर में गए हों, जहां रहते हैं उस शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में गए हों और वहां आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथी बनते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया और फिर वो शहर अच्छा लगने लगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं। चलिए, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत आप जानते ही हैं जयदेव का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियां शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती हैं, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरियां फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाजें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्म आया गया ये गाना है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा जरूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें से हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूं। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूं गर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने बात लिखी। और एक साथी ने यह बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। गाना काफी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप जरूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन, या फिर यूं कहें कि शुरुआती जीवन जहां हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफर ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाजें हैं।

एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना। और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरे स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफर कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है। नजर ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाजें मुख्य आवाजें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए। सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी मैं, और जितनी मधुर आवाज है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है, बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है, फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारी साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है। जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती है तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशोदास की आवाज में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, आपने प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: The Jharkhand CID for the fourth consecutive day. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. U.S. President Donald Trump has said that negotiations with Iran, expected to take place through intermediaries, are scheduled to take place today. Speaking to reporters on board Air Force One, Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz, while asserting that an accord would be established concerning the denuclearization of Iran. Iranian state media similarly indicated that discussions between Iran and Oman concerning a joint operational mechanism to govern the maritime corridor were in their final stages. The situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir remained tense after reports of violent clashes between protesters and security forces, with rights groups alleging a significant rise in casualties. According to data updated by the Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as of yesterday, a total of 80 fatalities have been documented. Amid the ongoing developments, the Joint Awami Action Committee has appealed to the United Nations, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, international media organizations and diplomatic missions to examine available footage and press for an immediate, independent and impartial investigation into the violence. At least 8 people were killed after Ukraine launched a large-scale overnight drone attack targeting military, energy and civilian infrastructure across several regions of Russia. According to Russia's Defense Ministry, its air defense systems intercepted 635 drones during the attack. Local authorities said 3 people were killed and 2 others injured in the Udmurtia region, while 3 more people lost their lives and 5 were injured in the Belgorod region. Foreign Affairs Minister of the Republic of Uzbekistan, Saidov Bakhtiyar Odilovich, called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan today. In a social media post, President Murmu noted that both India and Uzbekistan share deep historical, cultural and civilizational ties rooted in ancient trade routes. During their meeting, the two leaders agreed that this visit provides an opportunity to identify new areas of bilateral cooperation and deepen mutually beneficial partnership across diverse sectors. In Odisha, the flood situation is steadily improving, with water receding in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. The Hirakud Dam authorities have reduced flood water discharge after a decline in reservoir inflow. Our correspondent reports that the state government has announced financial assistance for damaged houses and crop losses as restoration gathers pace.
1: The flood situation in Odisha continues to improve as water has receded in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. With inflow into the Hirakud Reservoir declining, authorities have closed 3 spillway gates, reducing flood water discharge to 19 gates from 22 earlier. The state government has begun a detailed assessment of flood damage and announced financial assistance of up to 1,20,000 rupees for families whose houses were completely destroyed. Compensation has also been announced for partially damaged houses and crop loss. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: News just in, the Lok Sabha has been adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Heavy rainfall is also expected tomorrow over Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian contingent on its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 39 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. We have news just in, the Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in three assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की तीन सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
4: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
2: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी

0: ना मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
3: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के

0: इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एस डी बर्मन का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: कहाँ के,
1: हम चांद आत्मा के,
0: हाय हाय वुरूद इतना,
1: हाँ हाँ वुरूद इतना,
0: उफ ये अदा है ये नशा,
1: हाँ हाँ।

0: पकड़ हाय ये पकड़ हाय हाय हाय तुम हो हंसी कहाँ के
1: हम चांद आत्मा के
0: हाय हाय गुरूर।

0: नैया
1: हाय। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज़, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। अभी बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहाँ का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जब आपको लगे भाई कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
1: जी,
2: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या समोसे, तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे,
1: हाँ
2: वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है। हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुँचाई है।
2: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
2: जी,
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही
1: कहा। और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
2: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना।
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
2: बिल्कुल।
1: तो आज अशिक्षित का हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद चीज़ होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं।
1: हाँ।
2: और इस दूध में जो जैसे आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
1: हाँ।
2: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
1: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
2: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
1: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए, यानी उसके विकास के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें होती हैं।
2: बिल्कुल। और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता है,
1: हाँ,
2: उसको कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
1: बिल्कुल।
2: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो जाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं
2: जी।
1: वो।
2: और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी है और उनके पास परिवार को, उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
1: तो चलिए अब ये सुन लेते हैं।

0: इतने बड़े जहां में तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ।
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, ये सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की डोलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है, और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई, और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
0: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा, जैसे आपने कहा ना कि इसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे ना केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीज़ों की जब कमियां आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल, कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है, ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते।
1: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
4: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज

0: जो जी चाहे कीजिए।
1: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर चार पांच आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
2: रुको, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
1: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को यह बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
3: इस बुढ़े की शामत आई है। हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
2: जी,
3: ये क्या बात है?
2: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
3: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
2: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
3: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
1: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
4: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
2: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
3: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
2: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
1: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं, और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
3: क्या बात है मनोहर सिंह?
2: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
3: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
1: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
5: क्यों रे, तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो तीन तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
2: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
4: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
3: क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
2: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा? रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
3: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है,

0: ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
1: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
2: ठाकुर साहब, ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए। इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
1: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
3: ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
1: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
4: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज।
5: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
6: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतज़ार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतज़ार आज पूरा हो गया।
7: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज़, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल।
6: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है, कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीज़ें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
7: बिल्कुल।
6: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीज़ों को छूने की पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय होने
7: विषय है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन, क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
6: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर, तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
7: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: क्या क्या
1: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ते रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहाँ से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात,
0: कई बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहाँ से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीज़ों को लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज़ या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज़ के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोज़ाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है यानी व्यस्तता है या

0: भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल, है ना?
1: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं, ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि भाई जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे, तो टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
0: बिल्कुल, टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था, अगर ये सोचें, और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया, या हाँ, इसका आनंद होता क्या है, ये भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए, ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे, दुकान पे ले जाएं जहाँ पे इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
1: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज़ हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छुमंतर, और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीज़ों में भी विकास होता है।
0: बिल्कुल, और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है, वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज़्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोज़ाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता यह है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा सा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
1: बिल्कुल, जहाँ एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहाँ से समय निकालें, लेकिन वो चीज़ जब हमें रुचि देने लगती है और मज़ा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वहीं उस चीज़ के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
0: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

0: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है
1: बिल्कुल।
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वहीं मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
1: बिल्कुल, चीज़ें तो वही होती हैं, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज़ को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज़ है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
1: चलिए।
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुँच जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे ज़रूर पूरा कर लेंगी और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
1: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
0: जी,
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के

0: आज से सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीज़ों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है। प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
1: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
0: जी।
1: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं। एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरन।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, है ना? तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता है, कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदि हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
5: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉयड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉयड फोन और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फ़ोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाते, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है
4: जी।
5: तो वो लोग भी अभी इसे चलाना सीख रहे हैं
4: बिल्कुल,
5: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
4: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज़ का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
5: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे ज़रूर खाते थे।
4: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मूढ़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पर इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सचर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
5: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसकी व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची चीज़ यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गर्म भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं। और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
4: उसका जो मसाला है जी
5: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे सभी चीजें डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं
1: भाई? हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को भेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुरी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर संसद में गतिरोध उत्पन्न किया। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद ट्रिनिटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को लघु और मध्यम उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए सभी बिलों का निपटान व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के माध्यम से करना होगा। विधेयक के अनुसार यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता विफल हो जाती है तो मध्यस्थता समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए मामला भेजा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि दलीलों के पूर्ण होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। दूसरे स्थगन के बाद सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह कदम न्यायिक क्षमता को और मजबूत करेगा, मामलों के प्रभावी निपटान में तेजी लाएगा और नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और उधर मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वास्तुकला, भाषा, भोजन, संगीत और धार्मिक परंपराओं में साझा विरासत ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया है। भारतीय नौसेना के नौकायन पोत त्रिवेणी के चालक दल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों सेनाओं की महिला परिचारिका नौकायन यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा ने ल्यूविन हॉर्न और गुड होप केपों का चक्कर लगाते हुए विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्रों को पार करते हुए 25,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी सफलतापूर्वक तय की है। राष्ट्रपति ने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने में महिला चालक दल के साहस, दृढ़ता और अनुकरणीय व्यावसायिकता की सराहना की। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक कल हैदराबाद में शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव रचना शाह बैठक का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई
2: जी
1: मार लग
2: जी
1: जाए किसी को,
2: जी
1: या डायबिटीज़ में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीज़ें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नज़दीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफ़ी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आँख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफ़ी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहाँ से फैलते हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर अब पेशेंट की आँख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज़ करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो। या तो क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा,
2: जी
1: काफ़ी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो साल 2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफ़ी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई मोतिया बढ़ गया है।
2: जी
1: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफ़ेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी
2: जी
1: उम्र में कर सकते हैं।
2: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा।
1: पक्का है
2: जी
1: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
2: अच्छा
1: एक चीज़ जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफ़ी टाइम जल्दी, काफ़ी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल है, पीछे के कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं,
2: अच्छा
1: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आँख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेज़र से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह ज़रूरत नहीं रहती।
2: जी जी
1: लेकिन अगर आपके किसी के आँख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए, तो दोबारा तो ज़िंदगी में या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज़ हो, वरना तो
2: पूरी जिंदगी
1: नाइन्टी
2: चलता है।
1: नाइन हाँ 100% पेशेंट में तो पूरी ज़िंदगी वही लेंस चलती है, किसी
2: जी
1: भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज़ 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज़ फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वॉट मोर अब कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए, बट शी इज़ ओके,
2: जी
1: शी इज़ नाइन्टी
2: तो
1: वन
2: इतना
1: ईयर्स ऑफ एज,
2: लंबा वो
1: इतना
2: लेंस
1: अरसा
2: चलता
1: हो
2: है।
1: गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है अब उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना।
2: जी बिल्कुल
1: जी
2: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है, इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
1: बहुत अच्छा सवाल। पहले ज़माने में हम लोग को रुकने पड़ता था, ये
2: अच्छा,
1: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
2: आजकल ऐसा नहीं है।
1: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
2: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
1: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है कम
2: जी
1: दिखाई दे रहा है,
2: जी
1: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफ़ी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुज़ुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूँ कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आँख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीज़ें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफ़ी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन हो मोतिया तोड़ने के लिए, वो पावर यूज़ कर रहे हैं आँख के अंदर उसको
2: जी
1: तोड़
2: जी
1: के
2: तो उसका
1: निकाल के
2: असर
1: उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूँ आपकी आँखों की उम्र आपकी उम्र की तरह, हम
2: जी
1: सब चाहते हैं हमारी आँखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आँखें भी 60 साल की है, तो इट हैज़ ऑल्सो एज्ड। तो अगर
2: बिल्कुल
1: मोतिया हो और आपके आँख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो, तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है। पेशेंट को हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आँख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी। ड्रॉप्स डालने, जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
2: जी जी,
1: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको दृष्टि देने के लिए,
2: करेक्ट।
1: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
2: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
1: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना, एक हद तक ही आंख में झेल सकता है
2: जी,
1: क्योंकि क्या होता है वो

0: वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो
1: जी
0: मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहाँ से पानी खींचता है और वो गिर जाता है। सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल
0: आँख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज़्यादा बुजुर्ग हो गया,
1: जी
0: तो वहाँ पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आँख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आँख में कहाँ गिरेगा, आँख में जगह कहाँ है,
1: बिल्कुल
0: तो अगर आँख में फट गया तो आँख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा,
1: जी
0: आँख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आँख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है। उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज़ पीछे की नस है, प्रेशर ज़्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सहलेगा?
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस ख़त्म हो गई तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान।
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
0: जी
1: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहाँ जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
0: जी बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं।
1: जी जी
0: नेत्रदान में एक बात समझनी ज़रूरी है कि आँख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फ़ायदा होगा?
1: जी
0: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फ़ायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके, काफ़ी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नज़दीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आँख बंद कर देते हैं ना
1: जी
0: आँख
1: जी
0: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है,
1: जी
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि
0: जी
1: ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है,
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
0: नहीं बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूँ कोई किसी का देहांत हो तो ये काफ़ी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि
1: जी
0: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्रदान करो या आप मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनों को फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो ज़िंदगी निकल जाती है ना,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
1: जी
0: दिक्कत होती है।
1: जी तो
0: उनके
1: इससे
0: लिए
1: बहुत
0: भी
1: लोगों की मदद हो सकती है।
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
0: जी
1: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं, छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई
1: जी
0: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
1: जी
0: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजरियस है, क्रिकेट बॉल हो कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं,
1: जी जी
0: लेकिन क्रिकेट बॉल हो कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है, वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टी टी टेबल टेनिस खेलते टाइम, प्रॉब्लम यह है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है
1: जी।
0: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना।
1: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता है,
0: बहुत खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहाँ पे ये
1: फैक्ट्रियां हैं
0: या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहाँ पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं उसके आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के
1: जी।
0: वो ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं हजार टाइम उनसे कहता हूँ आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: वो हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50 आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
1: खुद नहीं
0: ग्लासेस
1: कर सकते लोग।
0: और एक और चीज मैं देखता हूँ कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूँ कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने,
0: ज्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है।
1: हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स,
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर आईज। तो बहुत इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये कंसेप्ट
1: छोटे बड़े वर्कशॉप ये इंडस्ट्रीज यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर पर
0: आंखों के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं
1: जी
0: बाकी चीजें आ रही हैं लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूँ कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता
1: जी।
0: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूँ कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में। जो
0: नहीं फैशन है उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो वैसे उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा
0: सकते हैं। ना ना ना नो नो नहीं, वो दैट इज सी वो कलर ग्लासेस है
1: जी,
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले
1: जी।
0: ये जो रोड साइड वाले हैं इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द, आप टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक पीले रंग का लाल रंग का हरे रंग का आप खरीद लो फैशन के लिए है
1: जी जी।
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है उसके आगे कुछ नहीं है
1: जी। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
0: हाँ काफी टाइम होता है, काफी टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो आंख बचा सकते हैं। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
1: जी
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, दो तीन दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है मुफ्त भी है ना अपने देश में। तो
1: बिल्कुल जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना बहुत
1: जरूरी
0: है, बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ एक गाना सुनते हैं जरूर से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आँख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना,
0: जी
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आँख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन
0: जी
1: आ रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: आजकल ज़्यादातर बम्बई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है
0: हाँ हाँ
1: और वायरल टाइप ज़्यादा आता है, जो आँख लाल आती है, सीज़न चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है।
1: तब वहाँ आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है
1: सबसे
0: उसका भी
1: ज़्यादा,
0: आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज़्यादा,
0: ओहो,
1: सबसे ज़्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आँख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दी है। इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल्स रहते हैं आँख के अंदर, और वो अपने आँख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है,
0: जी
1: तो हर टाइम जब हमारी आँख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आँख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
0: जी
1: आँख को साफ कर रहा है।
0: जी
1: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी
1: तो हर टाइम जब भी हम आँख झपकते हैं तो एक नया आँख का पर्दा तैयार हो रहा है, आँख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज
0: छींटे।
1: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया
0: तो
1: है,
0: ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
1: किसी
0: ऊपर।
1: भी परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है और ठंडा बाहर फेंकने के लिए। तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आँख
0: जी
1: को पानी
0: जी
1: मारने में। आँख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज़्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
0: जी
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आँख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
0: जी
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आँख में से, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
0: जी
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
0: दिन में नहीं
1: दिन में
0: निकलती।
1: नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
0: जी
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे, आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको
0: हाँ,
1: उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी। जितना
0: ओके,
1: हो दवाई अवॉइड कीजिए,
0: हाँ,
1: ज़रूरत हो तो ज़रूर दवाई डालिए। काफ़ी पेशेंट, नहीं, आँख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं, हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो
0: जी
1: लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत
0: जाइए।
1: जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए, वो डालिए,
0: हाँ
1: ये सुरमा डालिए, वो डालिए, जितना हो आँख को अकेले छोड़िए। अगर
0: जी
1: आपको लेडीज आईलाइनर यूज़ करती हैं, पहले काजल यूज़ किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था,
0: जी जी
1: हमारे माओ ने सबको किया हम छोटे
0: हाँ
1: थे तभी।
0: लड़कों

0: भी
1: हाँ, लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी सेफ है लेडीज के लिए
0: जी,
1: जो बाहर से लगते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
0: यस,
1: वहां पे लगा दी, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए।
0: हाँ,
1: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए
0: जी।
1: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को
0: जी।
1: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
0: नहीं।
1: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, हाँ, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
0: क्योंकि सबसे नाजुक,
1: सबसे नाजुक चीज है। बहुत बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते
0: जी।
1: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता
0: जी।
1: वेरी सिंपल
0: जी।
1: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
1: जी जी। और ये मुझे कहा गया है कि ये खतर योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है
0: जी,
1: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
0: हाँ,
1: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
0: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
1: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं आप, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या? आंख बंद कर रहे हैं, जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
0: जी।
1: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गरम नहीं रखेंगे, कांदा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
0: सही है।
1: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
0: जी,
1: जब ठंड होता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं ना
0: जी,
1: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना, आपको लग गया
0: तो
1: गिर गए, तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
0: जी।
1: बर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना
0: जी, जी
1: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है
0: जी।
1: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
0: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
1: सेम पानी। आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
0: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, गुलजार साहब का गाना जी है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आँख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था, जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियाँ सूख जाती हैं।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफ़ी रेयर डिजीज़ है। लेकिन एक चीज़ हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत ज़रूरी आजकल के ज़माने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और
1: हाँ,
0: उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का।
0: जी, जी.
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है
0: जी.
1: तो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूँ, आंखों में डायबिटीज में मोतियाजल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा, कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं।
0: जी
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है।

0: से सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
1: जी,
0: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
1: बिल्कुल
0: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
1: जी,
0: आप कोई भी चीज़ खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
1: ऑफ कोर्स,
0: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है। तो हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है, ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं, इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज़ है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज़ की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक हैं, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है। उनको ये समझना ज़रूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के
1: जी
0: द्वारा।
1: जी जी
0: अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है। जैसे
1: जी
0: हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया,
1: जी
0: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है।
1: जी
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज़ का।
1: हाँ
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी, आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहाँ से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई
1: जी
0: डायबिटिक्स में।
1: जी
0: अच्छा पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है, तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज़्यादा होती है,
1: जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वॉज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब ज़रूरी है।
1: जी
0: ओके, आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स है,
1: जी
0: ठीक है, वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज़ है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी में हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज, सभी के घर में लीकेज है,
1: जी
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारण ऊपर वाले के यहाँ से लीकेज आता है।
1: जी
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में, किस चीज का लीकेज होगा, डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलर एरिया वो इंट्रा सेलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहाँ हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा, आंखों में खून पेशी जा रही है तो
1: तो ब्लड
0: लीकेज किस
1: निकल
0: चीज़ का,
1: आएगा।
0: ब्लड निकल आता है, तो
1: जी
0: ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसके वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहाँ पे लाइट जाके लगता है और जहाँ से दिमाग तक जाता है, वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है, वरना हमको सारी खून अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वहाँ कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियाँ आए या खून आए और सूजन आए तो आँख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी, और
1: बिल्कुल
0: ज़्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीज़ें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज़ जिनको है, आँख का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आँख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है,
1: जी
0: उनको पता है सडनली आँख में एक दिन रोशनी कम होती है,

0: चेकअप के लिए आते, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो, और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक्स को शुगर कंट्रोल, डायबिटीज़ सबसे ख़तरनाक बीमारी है सर।
1: जी
0: डायबिटीज़ की दो ही चीज़ें हैं, या तो आपके साथ ऊपर जाती है, आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है।
1: जी
0: डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं। ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो, डोलो लो, एंटीबायोटिक लो, ये चले जाने वाली है।
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है।
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है,
1: जी
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती,
1: जी
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम।
1: जी
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यार, ये 1 साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं ना,
1: बिल्कुल
0: नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: दृष्टि।

0: अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल, और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप
0: बहुत
1: कराएं
0: जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें
0: जी
1: और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफ़ी टाइम, अगर आँख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड

0: रेटिनल बैरियर भी है
1: जी,
0: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता, तो वहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है, तो आँखों में काफ़ी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है वो होता है, तो ये चीज़ें जो है। हाँ, एक और चीज़ जो लोगों को दे, काफ़ी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आँख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं, ये बहुत कॉमन है, ये
1: जी
0: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और वाइट बैकग्राउंड देखो आपको दिखाई
1: तो
0: देंगे, सभी
1: दिखाई
0: में
1: देता
0: है,
1: है। जी,
0: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके, लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज़्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आँख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीज़ें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में या विट्रियस में पीछे के जेली में, या तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको आँख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आँख का हिस्सा नहीं, वो आके वहाँ पे चिपका हुआ है, तो जहाँ पे वो चिपका है काफ़ी टाइम वहाँ से वो सटक भी सकता है, जिसको
1: ओके,
0: रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं।
1: ये प्रेशर की वजह से होता है।
0: काफ़ी चीज़ों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है,
1: अच्छा,
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को,
1: जी
0: सेम चीज़ है, डिटैचमेंट भी
1: जी
0: स्पॉन्टेनियस हो सकती है अनफॉर्चुनेटली,
1: जी
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो इट्स इज़ वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज़ में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो तो क्या होने वाला है, वो
1: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान होना
0: जान ही
1: शुरू
0: नहीं
1: हो
0: आएगा
1: जाता
0: ना,
1: है।
0: उसमें
1: जी
0: जान निकल
1: जी
0: जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, वो कौन सी बीमारी है जिस पे
0: ये
1: ये सब होता
0: डायबिटिक
1: है?
0: रेटिनोपैथी में होता है एक,
1: जी
0: जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं।
1: ये क्या होता है?
0: मैक्यूला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है,
1: जी
0: उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्यूला ही कहते हैं
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्यूला में डीजनरेशन यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके
1: जी
0: दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं सूखा हुआ, या वेट गीला हुआ।
1: अच्छा,
0: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है, तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं, तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई, तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके
0: ये
1: लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
0: लक्षण कम दिखाई देता है,
1: अच्छा
0: और कोई नहीं,
1: जी
0: कम दिखाई देता है, तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं, अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ CT स्कैन ऑफ द रेटिना, तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, वो उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहाँ पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी अनफॉर्चुनेटली, या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है, लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है, तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको चार पांच लगते हैं या आते जाते रहते हैं, बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है, तो आँख की रोशनी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है। लेकिन फिर हम कुछ शरीर में देखिए लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आँख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं।
1: जी,
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीज़ों में, आप भी
1: बिल्कुल
0: जानते हैं, वेदर
1: बिल्कुल
0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज़ में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आँखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी चीज़ का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाए चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी
1: जी,
0: जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल यानी क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात है,
0: आप जानते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: वापस जाइए वापस 8th-9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस
0: वर्चुअल
1: बिल्कुल
0: इमेज है, अरे
1: हाँ,
0: वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया,
1: हमारी आंखों में
0: अब
1: सीधी
0: हम
1: होती
0: एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं, अच्छा वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है, क्या यार
1: कमाल
0: ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: जी,
0: ये
1: यहां
0: कर
1: तक
0: सका
1: आते
0: बचपन
1: आते
0: से।
1: मामला फिलोसफी की तरफ बढ़
0: हाँ,
1: जाता
0: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, देव केप समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: है यस
0: क्योंकि
1: डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है
0: जी
1: और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: है?
0: ना
1: डॉक्टर
0: हो,
1: दें तब डालना।
0: हाँ अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर
1: सेल्फ
0: डालिए,
1: मेडिकेशन इज डेंजरस।
0: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ देखिए, ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते
1: जी,
0: हैं, हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू दे आर मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस
0: उसी
1: करें।
0: रिप्लेस करें, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना,
1: जी
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे
0: हाँ,
1: हैं
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता,
1: जी,
0: ओके। लेकिन
1: बिल्कुल
0: मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए,
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: हाँ, बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए,
1: जी
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे, हाँ,
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी बातें आपने
0: उसके
1: बताई।
0: लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं, मरने तक शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखें, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपया करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, ये इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
1: बिल्कुल
0: आप महसूस नहीं करेंगे, टच भी इंपॉर्टेंट है, फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है, कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें, किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें,
1: जी,
0: सोचिए इसके बारे में। हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: हाँ,
1: बात
0: कि
1: है,
0: किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है, कोई शॉर्टकट वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ,
1: नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही ये बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में आपने बातें की।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी पहली सभा समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। शाम को 6 बजे दूसरी सभा में हम फिर लौट आएंगे और आपसे मिलेंगे। नमस्कार।

नमस्कार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय शाम के 6:35 हुए हैं। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम शाम की दूसरी सभा प्रारंभ करते हैं। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले आपको हमारे आज के दूसरी सभा के कार्यक्रमों के बारे में बता देते हैं। अब से कुछ ही समय बाद आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में पहले मार कार्यक्रम, जिसके तहत आज सुन पाएंगे कुछ मार आधुनिक गीत अफिया एल बंगपुई और साथियों की आवाज़ में। हेगुई बमले जेमे और साथी सुनवाएंगे कुछ जेमे आधुनिक गीत जेमे कार्यक्रम में 6:25 पर। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से हंदियार आंचलिक बातरी रिले किए जाएंगे 6:45 पर। शाम 7:00 डिमासा कार्यक्रम के तहत सुनेंगे कुछ डिमासा लोकगीत चिंतामणि बोडो के आवाज़ में। वेदिया मिलिकपी और साथी सुनवाएंगे कुछ कार्बी भक्ति गीत कार्बी कार्यक्रम में 7:20 पर। और 7:40 पर कुकी कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ कुकी भक्ति गीत लमनई तिंग थांग्यू और साथियों के आवाज़ में। पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम

वेस्टर्न म्यूजिक रात 8 बजे। 8:30 पर आप आनंद ले सकते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों का। आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से समाचार संध्या में आप समाचार सुन पाएंगे 8:45 पर। रात 9 बजे हम आपको सुनवाएंगे कुछ असमिया गीत। इसमें आज के गायक कलाकार होंगे दिगंत गोस्वामी और गायत्री शर्मा। 9:30 से होगा आपका मनपसंद कार्यक्रम चित्रगीत। तो श्रोताओं, यह था हमारे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। इसमें पहले सुनिए मार कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ मार आधुनिक गीत आफिया एल बोंगपुई और साथियों के आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप मार कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ मार आधुनिक गीत आफिया एल्बोंगपुई और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है जेमे कार्यक्रम, इसमें आज सुनिए जेमे आधुनिक गीत हेगुई बमले जेमे और साथियों की आवाज में।
1: विजयम आसनम सुरक्षितम अकरोत् अत्रांतरे बिहारस्य बांकीपुर क्षेत्रे जनसुराज दलस्य प्रत्याशी प्रशांत किशोरः।

小花镇，上山耶，上山耶，上山耶，小呀公，母啊耶，小呀公。

江山易，秀才不爱秀才。我的资本了，上山修呀工，不爱修呀工，那么。

Okay, Sankhe sansai na sankhe buai na de tsimbala.

Aki gombozi bidinke darli zarke buke sanseko.

0: 사람들이 사지만 거리 팔로
1: श्रोताओं, अभी आप डिमासा कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ डिमासा लोकगीत चिंतामणि बोर्डो की आवाज में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। तो चलिए श्रोताओं, अब हम आनंद लेते हैं कार्बी कार्यक्रम के तहत कुछ कार्बी भक्ति गीतों का, वैद्यामिलिक्पी और साथियों की आवाज में।

พันโอกังออนยูตินเออาบังที่ลอยสู่เนปารมา

श्रोताओं, अभी आप कार्बी कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ कार्बी भक्ति गीत वैद्य अमिलिकपी और साथियों के आवाज में। आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है, तो चलिए अब आनंद लेते हैं कुछ कुकी भक्ति गीतों का। कुकी कार्यक्रम के तहत इसमें आज के गायक कलाकार हैं लमनई तिंग थंगयू और साथी।

श्रोताओं, अभी आप कुकी कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ कुकी भक्ति गीत लमनई तिंग थंगियों और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक।

श्रोताओं, अभी आप पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे, आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब आनंद लीजिए कुछ हिंदी फिल्मी गीतों का। पहला गीत सुनिए कड़ी फिल्म से, जिसे गाया है कुमार शानू और संजीवनी ने।

ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाज में। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण

0: विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
1: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
2: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
4: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
5: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
7: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
7: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
8: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया।

0: इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
2: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है असमिया गीत। इसमें आज सुनिए दिगंत गोस्वामी और गायत्री शर्मा से कुछ असमिया गीत।

0: श्रोता, अभी आप दिगंत गोस्वामी और गायत्री शर्मा से सुन रहे थे कुछ असमिया गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग,
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रगीत। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से इंसान धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार है।

जिसे जीना आता है वो अभाव में भी शुक्र ढूंढ लेता है, और जिसे जीना नहीं आता वो सुविधाओं में भी कमी महसूस करता है। जिंदगी कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं जहां हर वक्त मनपसंद धुन बजे। जिंदगी तो एक रेडियो है जहां जो बज रहा है उसी को समझकर उसी में अर्थ और आनंद ढूंढना ही असल जीना है।

जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्ज़ाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है।

कर्म ऐसे कार्यों की परिचय देने की आवश्यकता न पड़े, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान बन जाए, क्योंकि नाम समय के साथ मिट जाते हैं लेकिन अच्छे कर्म अमर हो जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत सुन रहे थे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय रात के 10 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। कल सुबह की पहली सभा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।